आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि है। तदनुसार दिनांक 13 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी मैं मनोज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन

0: में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों को।
3: मुक्त हो सकता है, ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 248। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के।

सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। सुबह 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का। दिन में 2:00 कार्यक्रम त्रिवेणी 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

शाम 7 बजे का समय है। जयमाला कार्यक्रम का 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता प्राण पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम। रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम

की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 248। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों का परिचय। तो आइए पहली कड़ी सुनते हैं, राग है पूरिया धनाश्री।
2: संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी रागों के गाने के समय के अनुसार देखा जाए तो हम तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। आज मैं आपको संधि प्रकाश

लोगों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संधि प्रकाश ये समय दिन में दो बार आता है। रात समाप्त होने के बाद जब दिन शुरू होता है उस समय, और जब दिन समाप्त होकर रात शुरू होती है तब। तो ये जो दोनों समय हैं इनको संधि प्रकाश कहते हैं, और इन समयों पर जो भी राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। हिंदुस्तानी रागों का हम तीन वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके गायन के समय अनुसार या उनमें जो स्वर आते हैं उनको उनके अनुसार। ये तीन वर्ग हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत है, दूसरा है जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत है, तीसरा है जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें जो पहला वर्ग है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत, ये राग सारे संधि प्रकाश रागों में आते हैं, और इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें गंधार शुद्ध ही होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि ये संधि प्रकाश का समय दो बार आता है, एक जब रात खत्म होके दिन शुरू होता है और दिन खत्म होके रात जब आती है। और मैं आपको जब दिन खत्म होके रात शुरू होती है उस वक्त जो संधि प्रकाश राग गाए जाएंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इन रागों में पूर्वी, पूर्याधनाश्री, मारवा और श्री ये प्रमुख राग हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा कि ऋषभ और धैवत कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। आज मैं आपको इन रागों में से पूर्याधनाश्री उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें ऋषभ और धैवत कोमल मध्यम तीव्र है, अन्य सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग होता है। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षड्ज। गाने का समय जैसा मैंने बताया तो उसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आरोह अवरोह मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ।

मैं पुरिया धनाश्री का आपको थोड़ा सा चलन बता दूं। इसका कारण ये है कि ये संधि प्रकाश रागों में पुरिया धनाश्री, श्री या पूर्वी, इनके स्वर काफी मिलते जुलते हैं। श्री और पुरिया धनाश्री के तो स्वर एक ही हैं, लेकिन उनका आना जाना, स्वरों का आना जाना जो है वो अलग करने की वजह से रागों को अलग आइडेंटिटी मिलती है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत

इस तरह से बनाया है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही सब तक है, लेकिन रागों का चलन ऐसा बुजुर्गों ने रखा है कि अलग अलग शक्ल बना देता है राग अपनी। तो पूर्या धनाश्री के स्वर और श्री के स्वर एक होते हुए भी देखिए पूर्या धनाश्री का चलन कैसा है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में एक रचना उस्ताद अमीर खां की आवाज में। इसे हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ये थी सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा की पहली कड़ी। राग था पूरिया धनाश्री। तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नायक।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले अनारकली फिल्म का गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण की बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द।

0: जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए समुंदर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मशाल फिल्म का गाना सुनिए, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, संगीत है एसडी पर।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं दर्द फिल्म का गाना उमा देवी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत है नौशाद अली का।

दर्द फिल्म का ये गाना आपने सुना उमा देवी की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए दो भाई इस फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में। राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना साधना फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एन दत्ता का।

साधना फिल्म का ये गाना आपने सुना, गीता दत्त की आवाज में, सहे लुधियानवी के बोल, संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप।
1: FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़।

पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो रहे हैं। समय हो चला है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से, और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

श्रोताओं, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में फिल्म सरगम का यह गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बेताब से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: श्रोताओं, अभी आपने साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म अनजाने का यह गीत सुना, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। प्रातः के 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू।
4: इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत

0: अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया

0: कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.5 MHz पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 8:15 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: शब्द है दुनिया, छोटा सा शब्द है लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

0: तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल जाए तो क्या है।
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो,

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर क्यों जब तक न खाएगा पास।

0: भाई
1: क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं बार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
0: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
1: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आज की दुनिया बिखरी सी है, सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है। यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: क्या हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है।
4: FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 8:28 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग।

FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 8:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे ब्रजमोहन डांगी के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं पहला लोकगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ब्रजमोहन डांगी की आवाज में यह लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र है। प्रातः के 9 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, बांध सुरक्षा, जलाशय प्रबंधन, राज्य जल सुधार ढांचे, सिंचाई जनगणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आज से शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत नदीम श्रवण का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

0: जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: मेरा कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर

0: रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: मैं आओ विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
1: इकबाल भैया, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख
2: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
2: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी तुम्हें हुई हूँ।
2: बस बस करो मेम साहब।
1: मेम साहब
2: क्या काम नहीं तेरे मेम साहब है जिससे तू?
1: नहीं
4: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
2: नहीं
4: सिकंदर, आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
2: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
5: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। गुनाह के पीछे गुनाह।

0: कौन है, ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई। वादा।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी

0: बेटी रीमा अमरापुरकर उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हैं फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
2: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे

0: थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं, और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे

0: राम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं। सो, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी जानी बात चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं।
1: उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा,
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना, जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे, और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार, पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है।